0: 那现在我们从那么说，我们听你讲，我们连前什么谈，连前去，贴着安装谈，真正基地可以去，对不对？拒绝，我听我这里现在说个屁，有个收音。
1: 那肯定比团了，陈明亮独行侠，兄弟们，你真去天天看嘛，俺站起说说，那也拉困难，走路也脚大，去接俺你个民族书，那些他他的去啷个要我接你呢？来我给估计出个进个短短古堂，出个送个你出，出个你姑来我俺个堂，出个你给出短短音了。
0: 提醒伊呢，李正凯，真正基地呢，CTP歌声传情，CTP娘婆你喜欢听，可以给地方长有位时间票给，趁那么些不得音了。嗯，我呢去新疆出不去，伊呢没去，可能给中了那些别天这样站谈，真正基地可以给地方解决这里才能学个皮有个学有他。嗯，他呢先我呢去新疆出不出名了，录制俺训练困难伊呢，想起松懈的里才做用么？伊谈谈呢先可能去来着，点票了他破天住了，点那伊呢，嗯。
1: 莫拉修修这片几十万了，嗯，那么说皮姐伊呢，应该来听他的李主任外面端修音素那些。那我你看陈真随便送些的呢，那不是我们中两个人呢，没看中的米拉皮的音了。嗯，提醒伊呢，俺今年碰见李前去，嗯，真正基地皮姐他到伊那里前去，天天看把安装皮姐里在那里修南看给，先做南不林给出现吧，把咱那俩这段那种那修音了。
2: 来，公干么事啊？喂，总干么事啊？侬干么事啊？咱还学会呢了。我们到巴山古林道。巴山是哪一边了？哦，那是老老哦。今天来在哪里学？嗯。从你这去普塘县古林中山街几多？那是老老哦。嗯，康中的闽南话是不是？从小的起来给说普通话呢？
3: 反正给闽南些的，人家不认得，这就跟来听那些别人都跟跟着来的，跟俺这出来的，跟接着来的，那么别人都跟不上来这，经常不受现在明明吃的因为这些民族修建的经常，实际别人家，那就出来认为，嗯，顺道来，嗯，给写把写的。
2: 他才能学到。那了，他才难了。嗯，那你说个的，现在这个嗯，年轻多，他就他们的土地地区少的。那了啊。嗯，年说个的，修的嗯，老年多给老起的来接，晚些来接，嗯，说个后代给这些年代来接，说个出生落地那，那等刚啥子有些种的特别这些民族学员去了。那了啊。
3: 嗯，对，那才修的，咱在你们郑州的这七镇了，那在我们的这地界了，嗯，其实给村干了，这古时候山上因为这些民族修建起来了。
2: 那
3: 了
2: 啊，
3: 嗯，对，先别亲自给县政府去操持。嗯，
2: 首先还承认哪里呢了？
3: 嗯，先不是就那个当然的县政府的东西。Less，
2: 那了。
3: 山西的马大爷，南瓜一树别，南瓜一树别，南瓜一树别。
2: 给个起来难度，给说明了说那边，心事听到底细，来来给难度，给难度，给说明了说别，给个。
0: 谢谢天白冰心，我大爷可是舅妈说给了，光看都。首先你不就他钱拿了？嗯，俺是点钱包钱了。那是点钱包。
4: 这是山东人，这些民族兄弟他钱拿给了。
0: 那了，他钱。嗯，谢谢。我来三包看不上。
4: 宁波的嘞，
0: 然后宁波的嘞，才还是温暖。
4: 地界是一道，六三零。
0: ऐसे दिखे ला यूं सिप्सिप सुसु शुशा लाओ मुझे लिखे ना चीज़ सुबे नोब समझूला ने दाना बे कंचू मिलम सिप दिखलांगे सोपिया इना
2: लेकिन ये लिया ये किंतु चला दा किंतु चमला चला निले सुबे ना लेकिन तो क्यों शुकी दाना के कंगा फुगिं दो ला
0: ऐसे
2: ना किंतु चमला तबे चंबे खाओ शिची यो चा
0: शिशा तेरी गाजी चिल्लम दो
2: इधर मुझे या कुछ क्यों कुछ बाल
1: लेस्ट तो चेना
2: अने केला इंदर खाना शुगी के ओके पसंद तेरे ला दांतवा तेरे ला अने तो चुंदा ला नमलिंग की निम्न जेव ला ने तो एं तू तक तो ना पाती तम जे नागे की जिन जो यों ले या फिर या ये ला
0: जैसे
2: जैसे अने मांगो चीज की जाने ठीक तो तो सिस्टम जे सर जंग आ मुझे तंग ना यों अयों ला
0: ना जी तो जी ला
2: मैं
1: तो ऐसे
0: क्यों